0: ढोल ताशा प्रोसेशन एंड विसर्जन स्टेलर परफॉर्मेंसेस एंड रैविशिंग शो गणेशा आइडल मेकिंग वर्कशॉप फॉर किड्स मल्टीपल फूड बूथ्स रेकॉर्ड नंबर देसी शॉपिंग बूथ्स एंड लॉट्स मोर For details, visit namastebayarea.com. For booths and sponsorships, email info@namastebayarea.com.
1: Grand sponsor, Sanjeev Gupta CPA. Travel partner, Travelopod. Powered by Realtor Nagaraja Nayya. Silver sponsors, Apex Consulting Services, Kavya Foods and My Pursue. Prashad sponsor, Vijeta Supermarket.
2: Everyone, this is Lavender Party. And you're listening to Viru Jallu Radio.
3: Oh la la, maza chayala.